रहना, आज बहुत मुश्किल है अकेला, लौट के घर को जाना, लौट के घर को जाना, मेरे दिल का कमरा खाली है। ए मिस कम कम, मेरे दिल